सुप्रभात, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 25वीं तिथि है। तदनुसार 16 जुलाई सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। अब आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र की हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, महात्मा बुद्ध का कथन है, जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

संके चरवाहे ने छेड़ी बांसुरी नैनों में जिसके गंगा जल चरणों में सागर सुषमा पुत्र में जिसके

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 251। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। भाग चौथा सुनिएगा आज। प्रस्तुति रूपाली रूपक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री कटरीना कैफ पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। इसके अंतर्गत साहित्यकार लेखक विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग। दिन में 12:05 से आपको सुनवाएंगे यादों की महफिल। दोपहर 1 से सुनिएगा सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। दोपहर 3 का वक्त होता है कार्यक्रम सखी सहेली का। आज के विषय हैं मनोरंजन के बदलते स्वरूप। कहानी पद्मश्री की के अंतर्गत यानुंग जमोह लेगो जड़ी बूटी विशेषज्ञ की बातें। मुझे कुछ कहना है पहेलियां कराती हैं दिमागी कसरत। उपयोगी टिप्स के अंतर्गत बारिश में रखें स्वास्थ्य का ध्यान। संवादक हैं चंचल वर्मा आरती श्रीवास्तव प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 से हेलो फरमाइश। संवादक मंदाकिनी जोशी प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। शाम 5 से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से आपको सुनवाएंगे तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से। शाम 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 से प्रस्तुत किया जाएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेता संजय गांधी से रेणु बंसल की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। रात 8 से हवा महल के अंतर्गत हास्य नाटिका सुनिए चोर देवता। लेखन अशोक कुमार शान का, निर्देशन कमल दत्त का। रात 8:15 से चित्रलोक। रात 9 से सुनेगा आपके लिए। रात 10 से सुनवाएंगे आपको छाया गीत। आलेख एवं स्वर नेहा अगरकर देसाई प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री कटरीना कैफ पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा आज के मेहमान सुनिएगा और साहित्यकार लेखक विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। इसके अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

शूर्पणखा जैसी राक्षसी कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है। शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर

वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़ें? तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खरदूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

0: सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए राग मारवा। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को मेरा नमस्कार। पिछली बार हमने राग पूर्या के बारे में जानकारी हासिल की थी, आज मैं आपको थोड़ा कुछ राग मारवा के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राग मारवा और राग पूर्या दोनों के स्वर एक ही हैं, लेकिन मारवा में जो है

प्रकाश राग सिर्फ पूरिया और मारवा है। सोहनी रात के समय गाया जाता है। राग मारवा के बारे में हम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र, अन्य सभी स्वर शुद्ध, पंचम वर्जित, जाति शाड़व, वादी स्वर इसका धैवत है और संवादी जो है ऋषभ। वादी संवादी के बारे में हम कह सकते हैं कि वादी हो जैसे कि एक राजा हो, उस राग का वो राजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर होता है। संवादी जो है वो उसकी पटरानी कह सकते हैं। तो मारवा में धैवत और ऋखभ, ये वादी संवादी एक दूसरे से के साथ संवाद करते हुए जब हम इनको बाकी स्वरों के साथ पेश करेंगे, तब जाके खूबसूरत मारवा हमारे सामने आएगा। धैवत और ऋषभ, इनको एक दूसरे के साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है। ये संधि प्रकाश रागों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत वीर रसपूर्ण राग है। इसका गायन समय आप सभी जानते हैं, सायंकाल सूर्यास्त के समय का राग है ये। आरोह इसका इस प्रकार है।

जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये राग वीर रसपूर्ण है या रौद्र रसपूर्ण है, लेकिन कुछ गुणीजनों का कहना है कि ये राग बीभत्स रसपूर्ण है। कुछ भी हो, ये राग बहुत खूबसूरत है और बड़ा लोकप्रिय राग है, और आप देखेंगे कि काफ़ी सभाओं में, काफ़ी महफिलों में शाम के वक्त ये राग पेश किया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय राग है ये। तो मारवा राग जो संधि प्रकाश राग है, उसमें आज मैं आपको एक बंदिश सुनाने जा रही हूँ। गुणीदास जी की बंदिश है ये, पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी की। हो गुनियन मिल गाओ बजाओ, सप्त सुरन के भेद सब मिल बखानो। हो गुनियन मिल गाओ बजाओ, ये बंदिश ताल एक ताल में निबद्ध है।

ये था राग मारवा का परिचय। अब प्रस्तुत है पंडित के महावीर की एक संगीत रचना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की विरह अभिव्यक्ति को राग मारवा के स्वरों ने कितना असरदार बना दिया है, आप खुद ही सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया और श्याम की आवाज़ों में दिल लगी फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत।

0: भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज़ों में पतंगा फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने।
4: रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
3: सुनिए नक्सब जारचवी का लिखा और खेमचंद प्रकाश का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम महल।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
6: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए
9: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में दुलारी फिल्म का गाना। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में मशाल फिल्म से कवि प्रदीप की रचना है और तर्ज बनाई है एसडी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, किशोर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में दूसरा आदमी फिल्म के गाने के साथ। मजरूह सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम बुलंदी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हलाकू फिल्म का गाना। शैलेंद्र ने लिखा इसे और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे एक बार कहो फिल्म का गाना बापी लहरी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। माया गोविंद थी गीतकार और संगीतकार थे बापी लहरी। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दो प्रेमी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: पाए लिया छनकी के ना
2: छनकी छनकी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: तरह बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: चंचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहाँ तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर।

0: दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मित्रों, जीवन में सच बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना जितना कठिन है, झूठ उतना ही आसान। झूठ बोलना, थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ का सहारा लेना और झूठ के सहारे एक और झूठ, फिर एक और झूठ, यानी झूठी बातें बनाना हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन सच कहना, सत्य बोलना और इस मार्ग पर चलना कुछ दरिया के बहाव को विपरीत दिशा देने जैसा ही है। सच की राह पर चलना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन कोशिश करने से, जहन में ये बात रखने से कि हमें सत्य बोलना है, ये राह आसान हो जाती है। हाँ, इस आदत को बनाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है।

सत्य हमेशा कटु लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन सत्य वचन हमारे जीवन की गति में सहायक होते हैं। जहां हम न चाहते हुए भी झूठ का सहारा लेते हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समय का हवाला देते हुए झूठ बोलते हैं, तो कई बार इसके गंभीर परिणामों से भी हम अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी आदतों से हम छुटकारा पा नहीं सकते, बस कोशिश करने की जरूरत है। सच बोलने की आदत न सिर्फ आपकी निष्ठा को अडिग बनाए रखती है बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली दिशा भी दे सकती है।

सच्चाई और अच्छाई का अनुसरण करना हमारे जीवन को आसान बनाता है। कभी कभी परिणाम के डर से भी हम सत्य बोलने से कतराते हैं, जो आगे चलकर झूठ बोलने की आदत में बदल जाता है। सत्य वचन हमारे जीवन की ढाल की तरह होते हैं, पीछे छूट जाते हैं सभी अवसाद। सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में उजली किरण की तरह बिखर जाता है और जीवन में एक नया रंग भर देता है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
4: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
5: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
4: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
5: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
6: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट,
7: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
8: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
0: राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में जब तक है जान, इस फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और तर्ज AR रहमान की।

जी हाँ दोस्तों, आपको इस गाने से याद आ ही गया होगा जो फैंस हैं। या अभिनेत्री कटरीना कैफ जी का जन्मदिवस है आज। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं जीवित शरदा शतम। और उनकी ही फिल्म धूम 3 का आपको गाना सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे एक था टाइगर, इस फिल्म का गाना। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए मीका सिंह और यो यो हनी सिंह की आवाज़ों में वेलकम बैक फिल्म का ये गाना।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह की आवाज़ में शुभ मंगल ज़्यादा सावधान फिल्म का गाना। गीतकार थे वायु और संगीतकार तनिष्क वायु। लीजिए अब सुनिए कुमार का लिखा और जतिंदर शाह का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की। फिल्म का नाम दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड।

0: ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में। प्रदेश के विभिन्न कृष्ण मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है। IRCTC ने इस वर्जन में 4 बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें कठिन कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। साथ ही यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। इसमें टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट पर यात्रियों की जानकारी सेफ हो जाएगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान होगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि ये परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने और परियोजना को तय समय सीमा में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समझौते के अनुरूप सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से पूरा करने और जरूरत के अनुसार पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत और यूके के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता देश की आर्थिक प्रगति का नया अध्याय है। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समझौते से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री शेखावत ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत की है और इसी नीति के तहत अनेक देशों के साथ व्यापारिक सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत कल जयपुर से ब्रिटेन के लिए पहली

0: निर्यात खेप रवाना की गई। ये खेप जयपुर के कनकपुरा स्थित कॉनकोर डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। पहली खेप में 4 कंटेनरों के माध्यम से हस्तशिल्प, रत्न आभूषण और औषधि क्षेत्र से जुड़े उत्पाद भेजे गए। जयपुर में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने योजना की उपयोगिता और एमएसएमई क्षेत्र को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि योजना से उद्यमों को कारोबार बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है।
1: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कोई एमएसएमई या एविएशन सेक्टर जिसको वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद किसी प्रकार का रीपेमेंट फाइनेंसिंग में, लेबर डिप्लॉयमेंट में या एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में कोई दिक्कत आता है तो ये ECGLS में से आप बोरो कर सकते हैं। तो राजस्थान में अभी तक 19,000 कंपनीज ने इस क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी अवेल किया है। बैंकर्स के साथ विचार विमर्श हुआ जो इस क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में अक्रॉस राजस्थान डिसमिनेट करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में आज से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 15 जुलाई से शुरू हुए गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग के 5 दिवसीय विशेष अभियान की भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए निदेशालय से 15 चिकित्सकों के दल फील्ड में भेजे गए हैं। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की पहचान कर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जयपुर में आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार जयपुर में हो रही ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश और पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अजमेर में पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन ने बताया कि महिला ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है।
2: पूछताछ में बात सामने आई कि अवैध रूप से उसने बांग्लादेश से भारत में पिछले महीने जून में एंट्री की और काम के तलाश में घूमते घूमते जयपुर और फिर ब्यावर और फिर अजमेर में कल अजमेर आना उसने स्वीकार किया और उसे डिटेन किया गया। डिटेन करके सारी चीजें पता की गई, उसको डिटेंशन सेंटर पे भेजा गया है। इसमें विशेष रूप से जो योगदान रहा वो CIDCB की जो टीम है उनका और किशनगंज थाना की टीम का रहा और अभी उससे पूछताछ जारी है। अभी तक जो बात सामने है स्वयं ही जो बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर है उसी से क्रॉस करके और फिर आगे।
0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश और विदेश के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये यात्रा सभी के जीवन में श्रद्धा, सेवा, सद्भाव और लोक कल्याण की भावना को और अधिक मजबूत करे। इस अवसर पर प्रदेश के रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में जगदीश मंदिर से राजसी वैभव के साथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में 21 घोड़े शाही लवाजमा, विभिन्न समाजों की आकर्षक झांकियां, भजन मंडलियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। पाली और बारा में भी रथ यात्रा को लेकर लोगों में उल्लास का माहौल है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 में राजस्थान का पवेलियन देश विदेश से आए खरीदारों और आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयपुर के गुलाबी नगर की थीम पर तैयार इस पवेलियन का प्रवेश द्वार ऐतिहासिक अजमेरी गेट की तर्ज पर बनाया गया है। पवेलियन में बगरू और सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, बंधेज, लहरिया, हस्तशिल्प, होम फर्निशिंग और रेडीमेड परिधानों सहित राजस्थान के वस्त्र उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहां बगरू ब्लॉक प्रिंट और टाई एंड डाई कला का लाइव प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये पवेलियन प्रदेश के वस्त्र उद्योग और शिल्पकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रभावी मंच बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में। प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है, FM बैंड 100.3 MHz पर। आइए अब सुनते हैं FM रेडियो पिंक सिटी।

0: गुरुवार होता है सबसे निराला, जब खुलता है इंफोटेनमेंट का पिटारा और होती है एक खास मुलाकात खुद जयपुर की अपने जयपुर के साथ। सारे तेवर और सारे फ्लेवर, इट्स नाउ देन एंड फॉरएवर। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: जयपुर की है जान,
2: ओ मेरी जान।
1: जयपुर की है मुस्कान,
2: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
1: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।

0: Lovely morning chit chat. Only on 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khas hai, kuch to baat hai.
1: 9:12, 9:13 और पूरे 1, 2, 3 सेकेंड. वेल, गुरुवार की ये प्यारी सी मुस्कुराती हुई सुबह, 16 जुलाई का दिन और मुस्कुराता हुआ गुरुवार, जहाँ ट्यून आपने किया 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी, जहाँ साथ में हूँ मैं, बोले तो आज प्रिटी. गुड मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग्स महाराज जयपुर. काई हाल चाल भाई, मैंने

0: You're listening to Radio Pink City right here on 100.3 FM.
1: कुछ कहता है जयपुर, कुछ कहता है जयपुर, क्या कहता है जयपुर, कहता है जयपुर।
2: मैं आमेर महल हूँ, आमेर महल हूँ, राजा मान सिंह की शान और जय सिंह की कल्पना का बेहतरीन शाहकार। चार हिस्से हैं मेरे, लेकिन किससे हजार हैं। महान कछवाह राजवंश का मुकुट हूं मैं, अजय रहा सदा, शत्रुओं के लिए विकट हूं मैं। हिंदू मुगल शैलियों ने हाथ मिला

0: कर मुझे रचा है। बलुआ पत्थर और संगमरमर का मिलन मुझ में हुआ है। गणेश पोल पर खुलता है सिंह द्वार मेरा। माँ शिला देवी ने उठाया है रक्षा का भार मेरा। मावठे में अपनी छवि निहारता शान से खड़ा हूँ। जयगढ़ के साथ एक सुरंग से जुड़ा हूँ। दीवाने आम हो या दीवाने खास, शीश महल हो या सुख निवास, सब कुछ अलग, सब कुछ बेहद खास। इसीलिए तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हूँ मैं। अतीत का जीवंत प्रमाण, जयपुर का आमेर महल हूँ मैं। आमेर महल हूँ मैं।
1: FM, रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। गीतों की लड़ियां। आउच।
2: सवालों की झड़ियां,
1: चटपटी सी बातें,
2: शख्सियतों से मुलाकातें।
3: नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन हूँ।
2: थोड़ी सी हंसी,
1: बहुत सी खुशी,
2: कहाँ पर
1: और कहाँ, सिर्फ 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी पर। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। वेल, काला चश्मा जिसके गोरे मुखड़े पे सच में जचता है और जो बड़ी सोनी लगती है, वो है हमारे बॉलीवुड की बार्बी डॉल।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: 9:30

28 मिनट और पूरे पूरे 22-23 24 सेकंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम 16 जुलाई गुरुवार की ये सुबह और बात करें 16th ऑफ जुलाई की तो आज का दिन बेहद खास है बॉलीवुड के लिए क्योंकि आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं बॉलीवुड की बार्बी डॉल यानी कि कैटरीना कैफ। मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करने वाली कैटरीना की पहली फिल्म थी साल 2003 में आई बूम। कज़ाद गुस्ताद की इस फिल्म से कैटरीना को नोटिस तो किया गया लेकिन साथ ही साथ जिसे नोटिस किया गया वो था विदेशों में पली बड़ी कैटरीना का जो हिंदी प्रोनंसिएशन था वो आपकी डांसिंग स्किल्स एंड सब और बहुत सारे सवाल भी उठे। लेकिन अपने डेडिकेशन और मेहनत से कैटरीना ने ना केवल अपनी एक्टिंग स्किल्स बल्कि प्रोनंसिएशन भी काफ़ी इम्प्रूव किया। नमस्ते लंदन और सिंह इज किंग इस तरह की फिल्मों से आपने अपनी एक पहचान बनाई और धूम 3 और एक था टाइगर जैसी फिल्मों ने इस पहचान को मुकम्मल कर दिया। बात करें कैटरीना की पॉपुलैरिटी की तो आपको पॉपुलैरिटी मिली थी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। ये फिल्म आई थी साल 2005 में और इसी की सफलता ने आपको बतौर लीड एक्ट्रेस इंडस्ट्री में अपनी पहल जमाने में मदद करी थी। देन अजब प्रेम की गजब कहानी, न्यूयॉर्क, राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस तरह की फिल्मों ने आपके करियर ग्राफ को काफ़ी ऊपर पहुँचाया एंड फाइनली एक था टाइगर जैसी फिल्मों ने आपको बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार कर दिया। बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स के अलावा कैटरीना के डांस नंबर्स जैसे कि चिकनी चमेली, कमली, शीला की जवानी ये खासे पॉपुलर हुए हैं अपने स्पेशल मूव्स के लिए। और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कैटरीना कैफ का तो वो आपको बताते हैं कि देखिए क्या है कि कैटरीना भारत की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके लुक्स पर अमेरिकन कंपनी ने बार्बी डॉल बनाई है। वेल 2009 में एक फैशन शो हुआ था और इसमें कैटरीना ने जो है बार्बी ऑल डॉल्ड अप इसके लिए रैंप वॉक किया था और ये जो शो है ये बार्बी के 50th जो बर्थडे है उसके ओकेजन पे आयोजित किया गया था और यहीं पर एक अमेरिकन कंपनी ने एक्ट्रेस को कैटरीना कैफ बार्बी डॉल के सामने रूप में दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया और इसी के साथ कैटरीना कैफ एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। वैसे देखिए ये जो कैटरीना की सक्सेस स्टोरी है ये हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने में यकीन रखते हैं। सो वी विश आर ओन बार्बी डॉल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और अभी उन्हीं की शुरुआती फिल्म रेस का एक बेहतरीन सा गाना, एक पॉपुलर नंबर और वैसे अभी पूरे पूरे 10 बजे तक आज कैटरीना की ही फिल्मों के पॉपुलर सॉन्ग्स हम आपको सुनाएंगे। सो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Life is smile. Smile is good news. Good news is good to hear. Good to hear is soothing. Soothing bole to dil ka rishta. Rishta jo atoot hai. The bond which has no bend. Relationship which never ends. Radio Pink City 100.3 FM. Kuch to baat hai. Gulabi Sheher.
2: Sham Gulabi. Sair Gulabi.
1: गुलाबी चैनल,
2: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
1: गुलाबी हम और आप,
3: गुलाबी, तू है गुलाबी, दिन भी गुलाबी है, गुलाबी ये शहर। 100.3 FM, रेडियो पिंक सिटी।
1: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: 9:32 मिनट और पूरे पूरे 57 सेकंड्स और इसी गुलाबी नगरी की एक खास गुलाबी खबर आप सभी के लिए।
1: आप हैं आरजे प्रीटी के साथ, प्रीटी के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक।

सिटी कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। गुड मॉर्निंग्स कहते हुए मुस्कुराते हुए गुरुवार में ट्यून अपने किया रेडियो पिंक सिटी, जहां साथ में है आपके बोले तो अजय प्रिटी। और देखिए जी, एक बड़ी ही अच्छी वाली खबर आप सभी को सुना दी जाए ताकि आपकी मॉर्निंग सच में मुस्कुराहट ले आए। जयपुर में अब ट्रैफिक जैम जो है, देखिए होता है क्योंकि जितने बड़े शहर जितनी गड्डियाँ उतनी ही आराम से ज़्यादा जाम की स्थितियाँ, लेकिन आप जयपुर में ट्रैफिक जैम की आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिला करेगी। और इसके लिए पूरी तैयारी, बिल्कुल जी मैंने नहीं करी है, एंड डेट जो तैयारी करी गई है ये करी है JDA ने। तो आप क्या होगा कि आप JDA ने एक IP आधारित पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुरू किया है, और फर्स्ट जो स्टेप होगा इनिशियल स्टेज में ये 8 मेन जो जगह हैं वहाँ पे शुरू किया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें होगा ये कि इस पूरे सिस्टम का जो संचालन है वो अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर से होगा। अब शहर में अगर ट्रैफिक जैम की कहीं स्थिति है, रूट डाइवर्जेंस हैं, सड़क दुर्घटना कोई हो गई है, VIP मूवमेंट्स हैं, बारिश है, बारिश के बाद जल भराव है, और कोई भी इस तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जो आपको रोड पर चलने में परेशानी ला सकती हैं या आपकी मंजिल पर आपको पहुंचाने में देर हो सकती है, तो उन सभी से बचने के लिए इसकी रियल टाइम ऑडियो सूचना, वो जो संबंधित क्षेत्र, वो जो एरिया होंगे जिस पर्टिकुलर एरिया में वो प्रॉब्लम होगी, वहां पर स्पीकर्स के जरिए प्रसारित की जाएगी। और इस प्रणाली से सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और इस तरह के बहुत सारे संदेश भी प्रसारित किए जाएंगे। ये व्यवस्था जयपुर की स्मार्ट ट्रैफिक और डिजिटल सिटी प्रणाली को ज्यादा इफेक्टिव बनाएगी, होपफुली। तो बिल्कुल बहुत जल्द ये जो व्यवस्था है ये शहरवासियों के लिए एक नई सौगात होगी। और अभी क्योंकि आज कैटरीना कैफ अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो बिल्कुल आपकी ओर, जी हाँ तेरी ओर, फिल्म का गाना तेरी ओर गाना फ्रॉम द मूवी सिंग इज किंग, और ये आ रहा है आपकी ओर फ्रॉम रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: Lovely morning chit chat. Only on 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khas hai, kuch to baat hai.
1: 9:41 और पूरे 28 सेकेंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और बात करें 16 जुलाई तो वेल आज का दिन बेहद खास है आकाशवाणी के लिए, दूरदर्शन के लिए. जी हाँ, इन्हें ये जो नाम, वो नाम जिन्हें आप बरसों से जानते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन नामों को जिन्होंने दिया, आज उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है. आज बर्थ एनिवर्सरी है जगदीश चंद्र माथुर जी की. जगदीश चंद्र माथुर प्रख्यात नाटककार और एक संवेदनशील साहित्यकार थे. आपकी लाइफ की अगर बात करूं तो उसके बहुत सारे आयाम थे. 16 जुलाई 1917 को यूपी के एक गांव में पैदा हुए जगदीश चंद्र माथुर जी ने सेकंड या थर्ड क्लास, यानी कि बहुत कम जो उम्र होती है, तभी से स्कूल के जो नाटक थे उनमें भाग लेना शुरू कर दिया था. और सिर्फ 12 साल की जो उम्र थी उसमें आपने अपना पहला प्रहसन यानी कि पहला हास्य नाटक मूर्खेश्वर राजा लिखा था. ICS की परीक्षा पास कर विभिन्न पदों पर होते हुए साल 1955 से 1960 तक आप आकाशवाणी के महानिदेशक रहे. और आप ही के कार्यकाल में भारत में 1959 में टेलीविजन शुरू हुआ. और ये माथुर जी थे जिन्होंने इस टेलीविजन को दूरदर्शन नाम दिया. ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नामकरण भी आप ही की देन है. और इसके अलावा आपकी देन बात करें तो हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को रेडियो पर लाने वाले भी वे ही थे. सुमित्रा नंदन पंत से लेकर दिनकर और बालकृष्ण शर्मा, नवीन कमलेश्वर जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ साथ आपने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था. हटकर प्रयोगशील नाटक लिखने की जो पहल है वह भी आप ही ने की थी और इसकी शुरुआत की थी अपने अप्रतिम नाटक कोणार्क से. और यह आपकी प्रयोगशीलता का एक प्रमाण था कि कोणार्क जो नाटक था उसमें एक भी नारी पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेहद सफलतापूर्वक मंचित होकर दर्शकों का चहेता नाटक रहा है और कई संदर्भों में चर्चा का विषय भी बना रहता है. आधुनिक रंगमंच में आपका महत्वपूर्ण योगदान है. बिंब जो होते हैं उनकी शुरुआत आपने की थी. भोर का तारा जो आपका नाटक है वो पाठ्यक्रमों के अलावा सिलेबस में भी था. शारदिया, दशरथ नंदन, गगन सवारी, कुंवर सिंह की टेक, बंदी, एकांगी, ये आपके कुछ खास नाटक रहे. 14 मई 1978 को जगदीश चंद्र माथुर जी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे बेहतरीन सी विरासत छोड़ कर गए हैं.

0: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
0: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात।

0: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: 9:53 पूरे 10-11-12 सेकेंड्स रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. और आज 16 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है. टीवी सीरियल्स और मूवीज़ के जरिए एक खूंखार सास और प्यारी सी दादी के रूप में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी जी की. अब आप अगर कहें कि सुरेखा सीकरी जी कौन, तो वेल देखिए, बधाई वो फिल्म मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी. तो उसमें आयुष्मान खुराना की दादी का रोल जिन्होंने किया था वो थी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी. या फिर बालिका वधू वो सीरियल रहा है जो बहुत सारे लोगों ने देखा है. और बालिका वधू की जो दादी सास थी यानी कि कल्याणी देवी, वो थी सुरेखा सीकरी. सुरेखा सीकरी भारतीय सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर की एक दिग्गज अभिनेत्री रही और अपनी शानदार कला के लिए जाने जाने वाली इस अभिनेत्री

अत्री ने अपने करियर में 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। वेल, आपको सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो मिली थी बालिका वधु सीरियल से। 19 अप्रैल 1945 को दिल्ली में जन्मी सुरेखा सीकरी जी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी और लगभग एक दशक तक आपने थिएटर किया। फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी 1978 में आई फिल्म किस्सा कुर्सिका से। इसके बाद आपने तमस, मम्मो, जुबैदा, सरफरोश, बधाई हो जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो 1988 में तमस, 1995 फॉर मम्मो और 2018 में बधाई हो के लिए आपको सहायक अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। छोटे पर्दे पर भी आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, लेकिन बालिका वधु में निभाई गई कल्याणी देवी की भूमिका से आप घर घर में लोकप्रिय हो गई और आज ही के दिन सुरेखा सीकरी जी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन अपनी बेहतरीन अदायगी के जरिए आप हमेशा अभिनय के चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी।

0: जिंदगी एक इत्तेफाक है, बस आपकी और हमारी मुलाकात है। चंद लम्हों का है ये सफर जिसमें रास्ते कई और मंजिल एक है। इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते हुए रोज करें हमसे मुलाकात, बनाए रखें इस रिश्ते को बहुत खास। 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।
5: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
6: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
5: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
6: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
7: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
8: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
9: सुनते रहो।
10: प्यार में हो या रेलवे टिकट की कतार में, गुनगुनाना हमारी आदत है। किचन में करछी चलाए या ऑफिस में कंप्यूटर, गुनगुनाना हमारी आदत है। बच्चों के साथ खेलें या बुजुर्गों को सैर पर ले जाएं, गुनगुनाना हमारी आदत है। मैदान से खलिहान तक, सुबह से शाम तक, गुनगुनाना हमारी आदत है। क्योंकि
11: आदत हो चुकी है तेरी।
10: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जयपुर की सुरीली आदत। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
12: आदत हो चुकी है तेरी। आदत हो चुकी है तेरी।
13: और आदत हो चुकी है जयपुर को कुछ खास मेलेडीज की हर गुरुवार को।
0: मेलेडी क्वेस्ट, ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
13: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। वेल, मेलेडी क्वेस्ट वे प्रोग्राम जिसका हर गुरुवार रहता है सभी को इंतज़ार। और वेल, देखिए, इंतज़ार वो चीज़ है जहाँ एक एक घड़ी, एक एक पल ऐसा लगता है कि सदियों के बराबर हो गया है ना, जब वो इंतज़ार बड़ा ख़ास होता है। और इंतज़ार की घड़ियाँ, जैसे सपोज़ करिए, वो होता है कि सुबह सुबह आपको निकलना है, आप वेट कर रहे हैं ऑटो के लिए, वैन के लिए या फिर बस के लिए। वो जो एक एक सेकंड होता है, वो इंतज़ार कितना भारी लगता है। इसी तरह से गुरुवार को जैसे इंतज़ार होता है कि 10 कब बजेंगे, मेलेडी क्वेस्ट कब शुरू होगा, वो भी एक ख़ास इंतज़ार होता है। और बच्चों को इंतज़ार होता है कि मम्मी वो ख़ास वाले डिश कब बनाएगी, लंच में क्या देंगी, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगी, मम्मा कुछ अच्छा बना रही हो, इस संडे क्या बनने वाला है, तो वो जो अच्छा इंतज़ार होता है। कभी कभी किसी एक अच्छे दोस्त से मिलने का इंतज़ार होता है ना, तो इंतज़ार बहुत तरह का होता है। तो इंतज़ार का जो एहसास होता है वो बड़ा अलग सा होता है। और इंतज़ार की इतनी बात क्योंकि आज मेलेडी क्वेस्ट की जो थीम है वो है इंतज़ार। सो वेल, हो जाइए तैयार। और देखिए, करना क्या है कि एक गाना हम आपके लिए प्ले करेंगे, तो ताकि आपको अच्छे से थीम समझ में आ जाए। और करना कछू नहीं मेरे जयपुर, करना ये है कि लगाना है ध्यान और लगाना है कान, और ध्यान से सुननी है थीम और साथ ही साथ दिए गए क्लूज। तो आज मेलेडी क्वेस्ट की थीम है इंतज़ार। इंतज़ार वाले गाने आपको हैं हमें बताने। और सबसे पहले ये गाना इंतज़ार की बात, तो देखिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिन्होंने पाई है अपने जीवन काल में एज एन एक्टर, वो हैं हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, राइट? तो जब वो रेगुलर फिल्मों में एज एन एक्शन हीरो काम करते थे, उनकी फिल्मों का मुझे लगता है एक अलग इंतज़ार होता था, राइट? तो सबसे पहला जो गाना है वो अमिताभ बच्चन, जी हाँ, इंतज़ार वाला गाना जो आपको है हमें बताना। ये पिक्चराइज्ड है अमिताभ बच्चन एंड जीनत अमान पर। अमिताभ बच्चन एंड जीनत पर पिक्चराइज्ड इंतजार वाला गाना आपको है हमें बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फ़ोन लाइंस 2200-800 और इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। इस पेज पर जाइए और वहाँ जाकर जो लेटेस्ट पोस्ट है आप देखिए। मुझसे एक दो लोगों ने पूछा है कि लेटेस्ट पोस्ट क्या होती है, तो लेटेस्ट पोस्ट यानी कि FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, जब आप इस पेज पर जाएंगे तो वो पोस्ट जिस पर मेलेडी क्वेस्ट, ये जो प्रोग्राम अभी जा रहा है, इसकी डिटेल्स होती हैं, वो होगा लेटेस्ट पोस्ट। वहाँ जाकर कॉमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो मुझे बता दीजिए वो गाना जो बात करता है इंतज़ार की और पिक्चराइज्ड है अमिताभ बच्चन एंड जीनत अमान पर।

0: जयपुर की है जान,
1: ओ मेरी जान।
0: जयपुर की है मुस्कान,
1: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
0: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।

0: Weekly Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट. और मेलेडी क्वेस्ट में आज गाने इंतज़ार वाले. और इंतज़ार वाला गाना जो हमने आपसे पूछा था, पिक्चराइज्ड है अमिताभ बच्चन एंड जीनत अमान पर. एंड द सॉन्ग इज़ फ्रॉम द मूवी डॉन, जिसका मुझे था इंतज़ार. तो वेल, सही जवाब जिसका मुझे था इंतज़ार वो बहुत सारे लोगों ने मुझे दिया है. प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ. मधु टहलियानी जी का जवाब बिल्कुल ठीक. हरीश कुमार जी फ्रॉम बाईस गोदाम. बाबुद्दीन कुरैशी गेव अस द राइट आंसर. ममता लखोटिया रामनगर सोडाला से आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर. देन वी हैव विवेक कुमावत शास्त्री नगर जयपुर से. हनी भाटिया खजाने वालों के रास्ते से. मुकेश मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा फ्रॉम सुशांत सिटी. विशाल पुरोहित जी गेव अस द राइट आंसर. पवन कुमार रामचंदानी जी बिंदायका से आपने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब. और पवन कुमार रामचंदानी जी बिंदायका से सही जवाब के साथ आप हमसे फोन लाइंस के जरिए भी जुड़े थे. एंड देन अक्की वेदान अंकित ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब. कुसुम चित्तौड़िया, मिथिलेश चित्तौड़िया आमेर से. एंड अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. और अमित जी कहते हैं कि हमें तो गुरुवार को बेसब्री से आप ही का इंतज़ार रहता है. थैंक यू सो मच अमित जी. और मोहम्मद इमदाद एंड मोहम्मद आरिफ पुरानी बस्ती से. देन वी हैव सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर. प्रवीण चौहान जी गिव अस द राइट आंसर. महबूब चौहान एंड घनश्याम हीरानी जी फ्रॉम हीरापुरा. योगेश कल्याणमल अटोलिया, प्रेम देवी, ममता अटोलिया, दिव्या सकरवाल जयपुर अंबेडकर नगर से. देन विवेक खोवाल, वीना वर्मा लुनियावास जयपुर से. पंकज अरोड़ा जी फ्रॉम द मूवी जनता स्टोर. और पंकज जी कहते हैं कि जैसे आपका इंतज़ार था. थैंक यू सो मच. नरेश कुमार राज फ्रॉम लाल कोठी. एंड देन फोन लाइंस के जरिए जो हमसे जुड़े हैं, रेखा कोहली जी फ्रॉम बैनार रोड. वर्षा शर्मा जी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब. रजत पाटीदार वी वॉज द राइट आंसर. इकराम एंड बुंदू खां. ज्योति जी फ्रॉम चित्रकूट. सीमा जी का जवाब बिल्कुल ठीक. जगन चौधरी गेव अस द राइट आंसर. रिद्धि वैष्णवी एंड उमा पटनायक आप सभी हमसे जुड़े हैं महावीर नगर से. बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता. गुलरेज सलीमा एंड खुशबू फ्रॉम भट्टा बस्ती. मोक्षा पारिक ने दिया है बिल्कुल सही जवाब. शंकर जैन जी जौहरी बाजार से हमसे जुड़े सही जवाब के साथ. अभिनव शर्मा एंड मेघा शर्मा आपका जवाब बिल्कुल ठीक. नवीन बंसल फ्रॉम जगतपुरा. शशि कुमार जी कोठी कोलियान से. सुशीला दत्ता जी फ्रॉम बनीपार. लता मुंशी गेव अस द राइट आंसर. एंड श्याम खंडेलवाल आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. तो ये वाला जो गाना है डॉन फिल्म का गाना, बिल्कुल ये आपके लिए प्ले किया जाएगा. लेकिन अगला क्लू जो है वो आपको दे दिया जाए. और इंतज़ार पर ये जो गाना है बहुत ही, जिसे मैं कह सकती हूँ, बेहतरीन सा गाना है ना. सो इंतज़ार वाला ये जो गाना है ये पिक्चराइज्ड है डिम्पल कपाड़िया, सुरेश ओबेरॉय एंड राज बब्बर पर. डिम्पल कपाड़िया, सुरेश ओबेरॉय एंड राज बब्बर पर पिक्चराइज्ड इंतज़ार वाला गाना आपको है हमें बताना. और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फ़ोन लाइंस 2200800. इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहाँ जाकर कॉमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी हैं क्योंकि थीम सेम होती है तो कंफ्यूजन हो जाता है. तो फिल्म का नाम और गाने के बोल दोनों आपको लिखने हैं और आपको बताना है वो गाना जो पिक्चराइज्ड है डिंपल कपाड़िया, सुरेश ओबेरॉय एंड राज बब्बर पर और बात करता है इंतजार की. और अभी जिसका मुझे था इंतजार.

0: पतझर सावन बसंत बहार।
1: मौसम आते मौसम जाते, कभी खुशी कभी गम है लाते, पर कौन है जिसे आप हमेशा अपने पास है पाते। आपका अपना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: Melody Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: 10:20 और पूरे 58:59 10:21 रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम. वेलकम टू द शो मेलोडी क्वेस्ट. और मेलोडी क्वेस्ट में हमने आपसे पूछा था वो गाना जो बात करता है इंतजार की, और पिक्चराइज्ड है डिंपल कपाड़िया, सुरेश ओबेरॉय एंड राज बब्बर पर. और वो गीत है किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है. एतवार फिल्म का ये जो गीत है ये आप सभी के लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके नाम जिन्होंने दिए बिल्कुल सही सही जवाब. मधु टहलियानी जी हमसे जुड़ी हैं बिल्कुल सही जवाब के साथ, और मधु जी कहती हैं कि हमें तो पूरा वीक ही आपका इंतजार रहता है. थैंक यू जी. सुनीता झालानी जी बरकत नगर से, आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. देन ममता लखोटिया जी रामनगर सोडाला से विद द राइट आंसर. और डॉन फिल्म का जो गीत था जिसका मुझे था इंतज़ार, इसका सही जवाब देने वालों में शंकर कुमावत, ताराचंद कुमावत और सचिन सोवडेकर सिविल लाइन से भी जुड़े हैं, और आपका नाम अब हमें नज़र आया है, सो अब हम आपका नाम शामिल कर रहे हैं. और एतबार फिल्म का गाना जिन्होंने है सही पहचाना, कमल लुधानी गेव अस द राइट आंसर. पुष्पेंद्र सिरोही जी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. एंड देन वी हैव मोहम्मद तहसीम अंसारी, आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. शशि कुमार जी कोठी कोलियान से हमसे जुड़े विद द राइट आंसर. एंड मुकेश सरवणकर आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब. और यस हनी भाटिया फ्रॉम खजाने वालों का रास्ता. विवेक कुमावत शास्त्री नगर जयपुर से गिव अस द राइट आंसर. मधु सिन्हा स्मृति सिन्हा फ्रॉम सुशांत सिटी. पवन कुमार रामचंदानी फ्रॉम बिंदायका. एंड देन वी हैव अंकित फ्रॉम विवेक विहार. और शंकर कुमावत जी आपका नाम मैंने ले दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया है. तो देखिए आपकी शिकायत वाला मैसेज हमने बाद में देखा है. तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई नाम कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बाद में शो होता है, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि सभी के नाम शामिल किए जाएँ. अरविंद गुजराती ने दिया है बिल्कुल सही जवाब. मोहम्मद इमदाद मोहम्मद आरिफ फ्रॉम पुरानी बस्ती. एंड देन बाबुद्दीन कुरैशी गिव अस द राइट आंसर. एंड देन विथ राइट आंसर शंकर कुमावत ताराचंद कुमावत सचिन सोनवडेकर फ्रॉम सिविल लाइंस. पंकज अरोड़ा जी फ्रॉम जनता स्टोर. कुसुम चित्तौड़िया मिथिलेश चित्तौड़िया जी आमेर से विद द राइट आंसर. महबूब चौहान नरेश कुमार राज फ्रॉम लालकोठी. एंड देन योगेश अटोलिया कल्याणमल अटोलिया प्रेम देवी ममता अटोलिया दिव्या सकरवाल जयपुर अम्बेडकर नगर से. अमित कुमार नामा फ्रॉम नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती. अशोक कन्नौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर. प्रीति नितिन अग्रवाल जी फ्रॉम मालवी नगर. घनश्याम हिरानी जी फ्रॉम हेरापुरा. प्रवीण चौहान जी विथ द राइट आंसर. देन वी हैव अवतार सिंह जी जिन्होंने दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब. विमला गुगलानी जी गेव अस द राइट आंसर. श्रेष्ठा पारेख और मोक्षा पारेख हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ. बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा और मधु शर्मा भिंडो के रास्ते से विद द राइट आंसर. अशोक परिहार जी विद द राइट आंसर. यामिनी गर्ग सुरभि गुप्ता आपका जवाब बिल्कुल ठीक. सोनी मित्तल एंड यश मित्तल. शंकर जैन जी फ्रॉम जौहरी बाजार. गुलरेज और मोहम्मद यूसुफ आपने सही नाम अपना बताया है लेकिन आपने जगह नहीं बताई है, सो आई एम सो सॉरी. अनीता मेदी रत्ता गिव अस द राइट आंसर. हसन ने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब. झोटवाड़ा से हमसे जुड़े हैं. वंदना जैन का जवाब बिल्कुल ठीक. हरीश जी फ्रॉम बाइस गोदाम. देन वी हैव श्याम खंडेलवाल विद द राइट आंसर. मेघा शर्मा एंड अभिनव शर्मा का जवाब बिल्कुल ठीक. रजत पाटीदार जी जुड़े विद द राइट आंसर. जगन चौधरी ने दिया बिल्कुल सही जवाब. विशाल पुरोहित का जवाब बिल्कुल ठीक. रिद्धि और वैष्णवी हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ. और रोहित ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब. रोहिणी हमसे जुड़ी हैं जगतपुरा रेलवे बोर्ड कॉलोनी, कुछ आपने बोला था बट इट वॉज नॉट क्लियर. बट हाँ रोहिणी ने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब. तो ये वाला गाना बेहतरीन सा आप सभी के लिए प्ले किया जाएगा. लेकिन अगला क्लू, ये गाना बात करता है इंतजार की, क्योंकि आज मेलोडी क्वेस्ट की थीम है इंतजार. तो ध्यान और कान दोनों लगा के सुनिए मेरे जयपुर. इंतजार वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है जैकी श्रॉफ एंड पूनम ढिल्लो पर, वो आपको है हमें बताना। इंतजार वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है जैकी श्रॉफ एंड पूनम ढिल्लो पर, आपको है हमें बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों आप हमें लिखकर भेज दीजिए। और अभी किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी।

0: एक नई खुशी।
1: JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Great satisfaction comes from sharing with others, cause sharing is caring. So share your thoughts with 100.3 FM. Radio Pink City 100.3 FM. Kuch to khas hai, kuch to baat hai. Melody Quest. 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khas hai, kuch to baat hai.
2: 10:34 और पूरे 56-57 सेकेंड्स रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. वेलकम टू मेलेडी क्वेस्ट. और मेलेडी क्वेस्ट में हमने आपसे पूछा था वो गाना जो बात करता है इंतजार की और पिक्चराइज्ड है जैकी श्रॉफ एंड पूनम ढिल्लो पर. और ये सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी तेरी मेहरबानियां. दिल बेकरार था, दिल बेकरार है. तो ये वाला गाना जो है जिन्होंने सही पहचाना उनमें नाम शामिल होते हैं सुशीला दत्ता जी, यस, प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, आपने दिया बिल्कुल सही जवाब, सुशीला दत्ता जी फ्रॉम बनीपार, सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर. और सुनीता जी कहती हैं कि इंतज़ार पे भी इतने खूबसूरत गाने हैं ये तो हमें आज ही पता लगा है. बिल्कुल, देखिए इंतज़ार जो है, वैसे तो शब्द ही बड़ा मुझे लगता है अपने आप में बेकार है कि इंतज़ार करना है, लेकिन इंतज़ार पे जो गाने हैं वो सच में बेहतरीन से हैं. सो ये गाना जिन्होंने है सही पहचाना, दिल बेकरार था और दिल बेकरार है फ्रॉम द मूवी तेरी मेहरबानियाँ. इस गाने को और सही पहचानने वालों में जिनका नाम है शशि बेनीवाल जी फ्रॉम नाड़ी का फाटक, इशाक अंसारी आपने दिया है बिल्कुल सही सही जवाब, एंड देन शंकर जैन जौहरी बाजार से हमसे जुड़े विद द राइट आंसर, मोहम्मद रियाज सोनू शफीक अल्फेज जवाहर नगर से आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, और यस मोहम्मद तहसीम अंसारी विद द राइट आंसर, एंड ये यस बिकॉज कुछ मुझे लगता है शायद प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं. मूर्ति चंद अग्रवाल जी हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ, नरेश कुमार राज लालकोठी से आपने दिया बिल्कुल सही जवाब, प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर, संगीता कंवर जी वैशाली नगर से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, और संगीता जी कहती हैं कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है. तो देखिए आज आप मेलेडी क्वेस्ट के साथ चॉइस कनेक्शन भी सुन रहे हैं. शंकर कुमावत, ताराचंद कुमावत, सचिन सोनव टेकर और सोनू सिविल लाइन से आपका जवाब बिल्कुल ठीक, एंड महबूब चौहान एंड तबस्सुम फ्रॉम चार दरवाजा, पंकज अरोड़ा जी फ्रॉम जनता स्टोर, और पंकज जी कहते हैं कि दिल बेकरार रहता है आपके आने का. थैंक यू जी. कुसुम चित्तौड़िया एंड मिथिलेश चित्तौड़िया जी फ्रॉम आमेर, अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से, हनी भाटिया फ्रॉम खजाने वालों का रास्ता, मोहम्मद इमदाद मोहम्मद आरिफ फ्रॉम पुरानी बस्ती, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, एंड देन पवन कुमार रामचंदानी फ्रॉम बिंदायका, मधु टहलियानी जी गिव अस द राइट आंसर, एंड योगेश अटोलिया कल्याणमढ़ अटोलिया, प्रेम देवी ममता अटोलिया, दिव्या सकरवाल अंबेडकर नगर से, घनश्याम हीरानी जी फ्रॉम हीरापुरा, एंड देन वी हैव विथ द राइट आंसर इस फिल्म का गाना जिन्होंने है सही पहचाना. सो तेरी मेहरबानियाँ ये वाला गाना आई थिंक FB पे मैं सारे नाम ले चुकी हूँ, बट इनफैक्ट अगर फिर भी किसी का नाम रह जाएगा तो हम बिल्कुल जैसे ही हमें दिखेगा हम ज़रूर आपका नाम शामिल करेंगे. फ़ोन लाइंस के जरिए जो जुड़े हैं उनमें जिनके नाम शामिल होते हैं ख्याति शर्मा, हेमंत वर्मा, बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा एंड मधु शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता, शैलेश सोढ़ानी, अजीत सिंह एंड रंजीता बग्गा, दीपिका ने दिया बिल्कुल सही जवाब, गिरिजा अग्रवाल भौमिक अग्रवाल विद द राइट आंसर, बसंत शांडिल, ममता लखुटिया जी रामनगर सोड़ाला से, कनकलता ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, रेवा यादव हमसे जुड़ी हैं वैशाली नगर से, जगन चौधरी फ्रॉम निर्माण नगर, ज्योति जी चित्रकूट से, रेखा कोहली जी बैनार्ड रोड से, नीलम शर्मा मानसरोवर से, नरेश ओसवाल का जवाब बिल्कुल ठीक सांगानेर से, सुनील चौधरी जी गिव अस द राइट आंसर, अक्षय हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ, लता मुंशी गिव अस द राइट आंसर, श्याम खंडेलवाल विद द राइट आंसर, रूप सेठी एंड परमीत सेठी, शानू गुप्ता विवेक लखोटिया जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब। शुभम पारेख, पूरण सिंह, सीमा नागर, पवन नागर एंड पीहू नागर मानसरोवर से आप सभी जुड़े हैं। प्रज्ञा शर्मा जी गिव अस द राइट आंसर। राधिका त्रिपाठी एंड धारिका त्रिपाठी आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक। वेल नाम बड़ा दिलचस्प है, ये तो अभी मेरा ध्यान गया है। राधिका त्रिपाठी एंड धारिका त्रिपाठी मतलब वो तीन लेटर्स हैं इधर से उधर किए गए हैं और दोनों के नाम बन गए। सो इफ यू आर सिस्टर्स सो गुड, बड़ा सोच के आपके नाम रखे गए। समर अग्निहोत्री जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब एंड आयुष अवस्थी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। तो तेरी मेहरबानियां फिल्म का जो गीत है वो बिल्कुल आपके बेकरार दिल के लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन अगला क्लू आपको दे दिया जाए। ये वाला जो गीत है ये बात करता है ऑफ कोर्स इंतजार की, क्योंकि आज थीम है इंतजार। तो इंतजार वाला गाना अब है जो आपको बताना, ये पिक्चराइज्ड है ऋषि कपूर एंड दिव्या भारती पर। ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर पिक्चराइज्ड इंतजार वाला गाना आपको है हमें बताना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए। तो इंतजार वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर।

0: Melody Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट. और मेलेडी क्वेस्ट में हमने आपसे पूछा था वो गाना जो बात करता है इंतजार की, और पिक्चराइज्ड है ऋषि कपूर एंड दिव्या भारती पर. एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी दीवाना. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं. हो वेल, मुझे लगता है बहुत बड़ी वाली जो बात है ना इन दो शब्दों में है कि उम्मीद भी है और इंतजार भी है. और वो सचमुच बड़ा खास होगा ना, जिससे उम्मीद भी है और इंतजार भी है. तो एक खास वाला गाना आपके लिए प्ले होगा, लेकिन उससे पहले नाम जिन्होंने दिए हैं बिल्कुल सही जवाब. मधु टहलियानी जी हमसे जुड़ी हैं बिल्कुल सही जवाब के साथ, और मधु जी का ये फेवरेट सॉन्ग भी है. सुशीला दत्ता जी बनी पार्क से हमसे जुड़ी सही जवाब के साथ, और सुशीला जी कहती हैं बिटिया पानी पी लो, बहुत नाम हो जाते हैं वरना लोग रूठ जाएंगे, छूट जाएगा नाम तो. हाँ बिल्कुल जी, ये बात सही है. लेकिन ठीक है, देखिए अपना वक्त निकाल के अगर कोई शामिल होता है तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि सभी के नाम जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएं. कमलेश कोटिया, राखी कोटिया, पोलो विक्ट्री से आपने दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब. देन वी हैव ममता लखोटिया जी फ्रॉम रामनगर सोडाला. जानवी शर्मा आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. लीना बिंजू भाकरोटा हैंगिंग गार्डन से हमसे जुड़ी हैं विथ द राइट आंसर. एंड विथ राइट आंसर वी हैव अशोक शर्मा जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब. शंकर जैन जौहरी बाजार से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ. कमल लुधानी मानसरोवर से. एंड देन वी हैव दीपिका विथ द राइट आंसर. पूनम जांगिड़ जी का जवाब है बिल्कुल ठीक. और कमल पांडे, यस कमल पांडे कानाराम जाट मुरलीपुरा जय. कानाराम जाट, रामलाल जाट एंड कमल पांडे मुरलीपुरा जयप

0: हम शास्त्री नगर जयपुर, नरेश कुमार राज फ्रॉम लालकोठी, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, एंड देन वी हैव योगेश अटोलिया, कल्याणमल अटोलिया, प्रेम देवी, ममता अटोलिया, दिव्या सकरवाल अम्बेडकर नगर से, कुसुम चित्तौड़िया, मिथिलेश चित्तौड़िया फ्रॉम आमेर, पवन कुमार रामचंदानी फ्रॉम बिंदायका, देन संगीता कंवर फ्रॉम वैशाली नगर, मोहम्मद तहसीम अंसारी, अलीना एंड नीलोफर गिव अस द राइट आंसर, हनी भाटिया फ्रॉम खजाने वालों का रास्ता, प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से, घनश्याम हीरानी जी फ्रॉम हीरापुरा, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इमदाद फ्रॉम पुरानी बस्ती, एंड मधु जी कहती हैं बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं इसीलिए सब आपका इंतजार करते हैं, थैंक यू जी, शुक्रिया। और दीवाना फिल्म का गीत और जिन्होंने है पहचाना, आई थिंक FB से सारे नाम मैं शामिल कर चुकी हूँ और फिर भी FB पे अगर किसी का सही जवाब के बाद भी नाम रह जाएगा तो हम बिल्कुल शामिल करेंगे अब उन सभी के नाम जिन्होंने फ़ोन लाइंस के ज़रिए हमें दिया है बिल्कुल सही सही जवाब। पूनम जांगिड़ विद द राइट आंसर, लक्ष्मण चौधरी एंड जगन चौधरी विद राइट आंसर, सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर, राधेश्याम जी मानसरोवर मेट्रो से हमसे जुड़े सही जवाब के साथ, बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता, कृष्णा शर्मा आपका जवाब बिल्कुल ठीक, नवीन बंसल फ्रॉम जगतपुरा, फूल जहां ईदगाह से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, श्यामला नायर विद द राइट आंसर, महक गुलाटी, अवनी राठौड़, पीयूषा का जवाब बिल्कुल ठीक, वर्षा ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, अशोक परिहार, अवतार सिंह जी, अरविंद गुजराती एंड विमला गुगलानी आपका जवाब बिल्कुल ठीक, वंदना जैन हमसे जुड़ी हैं 22 गोदाम से विद द राइट आंसर, विक्रम राजावत ने दिया बिल्कुल सही जवाब, गुलरेज एंड मोहम्मद यूसुफ, सोनी मित्तल और यश मित्तल आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, रेवा यादव हमसे जुड़ी सही जवाब के साथ, नरेश ओसवाल और अक्षय आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो अब यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि एक एड जो होगा वो हम प्ले करेंगे और उसके बाद ये गीत प्ले करेंगे एंड क्योंकि गाना है थोड़ा सा बड़ा तो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट सॉन्ग, तो लास्ट क्लू था ये जो हमने आपको दिया है क्योंकि अगर अब मैं कोई क्लू दूंगी तो उसके बाद जो आंसर्स होंगे या नाम होंगे तो फिर मुझे लगता है किसी किसी के नाम छूट जाते हैं। सो चलिए ये मेलोडी क्वेस्ट का लास्ट सॉन्ग था तो इसे हम एंजॉय करते हैं और ब्रेक लेंगे ब्रेक के उस पार और उसके बाद 11 से 12 भाई आपनी ही बोली होली आपना ही गीत होला तो बस साथ रहो सुनता रहो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: अरे मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ, एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी, पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है, धोखेबाज नकली वेबसाइट सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो, सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: Evergreen songs of Bollywood, जो पुरानी यादों को कर दे ताजा, सिर्फ Radio Pink City 100.3 FM पर।

0: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
0: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात।

0: आप हैं आरजे प्रीति के साथ, प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: ते सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 एफएम माला। काई तो खास छे, अरे काई तो बात छे।
2: 11:01 रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम शुरू होगो आपनो अपनो प्रोग्राम जी को नाम छे चटकीलो राजस्थान। और राजस्थान जी की पहचान छे रंग रंगीला परिधान, चोखो चोखो खान पान, और वे इंसान जाका चेहरा पे सजी रहे छे हमेशा एक मुस्कान। तो भाई चटकीलो राजस्थान, और आज चटकीला राजस्थान हर बार में करा छा नई नई बात है ना, बिल्कुल अलग अलग सा विषय ले छा और वहाँ पे करा छा बात। तो आज एक बेहद खास बात करा ला भाई। देखो 10 से 11 में करया बात इंतजार वाला गाना की, तो भी तो कहीं सुरा में पिरोदी हो तो इंतजार अशुकून लागे हूँ, लेकिन इंतजार अपने आप में एक अशो नाम छे कि अरे यार ऊँ की बाट जोता जोता है ना। तो कोई चीज़ अशी जी की थे बाट जो छो, जी को थे इंतजार करो छो, कहीं छे वह चीज़, कोई अशो इंसान, कोई अशो काम, कोई अशो खास समय, जी को थाने हमेशा रहे छे इंतजार। वो कहीं भी हो सके छे भाई, देखो कहीं छे कि खुद के साथ जो कोई समय बिताओ वो हो सके छे, कोई खास हो इंसान, खास इंसान जी से मिल भागो था ना इंतजार रहे छे हमेशा कि आज मिल लियो और फिर अगली बार इंतजार कि अब फिर कद मिला ला। तो वो कोई भी ऐसी चीज़, कोई अशो काम, कोई अशो इंसान जी को था ना हमेशा हो वे छे इंतजार, जी की थी हमेशा बाट जो छो, तो वो कहीं छे। तो बतावा के लिए हो जाओ तैयार, बाकी फ़ोन लाइन 2200-800, तो बस करा ला बाता और बताओ माने कि वो कहीं छे जी को थाने हमेशा रहे छे इंतजार। और आभार मने लागे छे कि मैं सगड़ा जी को इंतजार कर रहा था, जी की बाट जो रहा था वो छे बारिश की बूंदा, क्योंकि अति गर्मी हो मेली छे ने कि यहाँ लाग रहे छे भगवान ही बादला कद बरसेला, राम जी रावला कद बरसेला, क्योंकि अति गर्मी अति उमस, तो बस यहाँ लाग रहे छे कि ई बादल बरस जा। तो बादला को बरसबा को इंतजार तो मैं कर ही रहा था, लेकिन उनके अलावा मैं सब लोग कोई ना कोई चीज़ को इंतजार करा छा, कोई की बाट जो छा, कई छे वह चीज़ जी को थे करो छो इंतजार, बता सको छो माने, जुड़ सको छो माँ की फोन लाइना के जरिए, और मन लागे छे कि कोई तुम्हा की साथ जुड़ भी गो। हेलो
3: हेलो
2: हेलो हेलो हेलो तो जुड़बा के बाद भी यहाँ से वहाँ को संपर्क टूट गो, लेकिन थे वहाँ से संपर्क कर सको छो, वहाँ का नंबर 2200-800 और ई लाइना पे नंबर पे संपर्क कर रहे थे, बता सको छो कि कहीं छे वो चीज़, वो काम, वो इंसान जी को थाने रहे छे इंतजार, जी की थे जो जो बात, और फिर देखा छा कौन छे जो जुड़गा वहाँ की साथ। हेलो
4: हेलो हेलो
2: हाँ जी नमस्कार,
4: राजेंद्र बोल रहा हूँ मैडम सांगानेर से।
2: हाँ राजेंद्र जी बताओ।
4: बरसात तो मैडम आ रही नहीं है अभी।
2: हाँ बरसात तो कोनारी की सूचना तो थे देव।

0: और थी बताओ थाने का ही को इंतजार है जो।
1: मगर देख रही हो जो ये गर्मी खूब पड़ रही है आपका, तो पता होगा जो बहुत ही लंबी पड़ गई गर्मी।
0: कोई बात को नहीं जी, अधिक मास छो बरसेली बरसात भी तो मने लागे छे राजेंद्र जी महा की बात पूरी तरह से सुनिया को ने और महा से संपर्क कर लिया ते संपर्क कर सको छो। लेकिन आज जी पे कराला बात वो छे, वो बात कि वो चीज वो इंसान वो काम जी को थाने रह छे इंतजार जी की थे हमेशा जो छो बात।

0: बिल्कुल जी, मेहंदी भी रचाला, देखो श्रृंगार भी मने लागे छे, अशी चीज छे जी को महिला ने तो हमेशा इंतजार रहे छे कि हाँ भाई साज श्रृंगार बनाओ श्रृंगार, और भाई अगर वे बनाओ श्रृंगार कौन करेली, साज श्रृंगार कौन करेली, तो मने लागे छे कि जो बाजार छे वे ही बंद हो जाला। अब भैया तो देखो शो तो चाल रही छे मारवाड़ी, लेकिन बनाओ श्रृंगार की अगर बात हो तो यहाँ कह जा छे ना कि जो रौनक है जिंदगी की वह महिला से है ना। और आप देखा छा कौन छे जो जुड़गा मा किसान। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार साहब,
0: कौन बोल रहे छे?
1: मैं अशोक टेलर बोल रही हूँ सांगानेर से।
0: हाँ जी अशोक जी, बताओ।
1: हाँ तो मैं पहली गाय बिटता है फोन मिल गो जो फोन कट गो मारो पहली मिले जो। हाँ तो पहले तो गाय पहली मिला था तो आखिरी मुझे 12 बजे हमको 10-5 मिनट दे जी मिले जो। अब तो मैं पहली मिल गो साहब फोन।
0: हाँ जी काई बात है, तो पहली तो थाने बधाई हो। अब बताओ जी काई को इंतजार रहे छे?
1: मैंने तुम्हारा बचपन को दोस्त से नवीन कुमावत जी को इंतजार है ज्यादा, तो मैंने कोई 10 बारी फोन करा था जब वो एक बारी यार मिले थे।
0: अच्छा काई काम करे छे अशु?
1: वो कोई बिल्डिंग लाइन में काम करे थे। तुम्हें टाइम मिले उन्हें तो मैं उन्हें खूब फोन करता रहा, फिर कोई टाइम निकाल फिर वो आओ जी। बिल्कुल ज्यादा इंतजार है मैं तो आजकल, तो बारिश को इंतजार से।
0: बिल्कुल कोई बात को नहीं जी, जब इतना मना के इंतजार कर रहा था तो ये बादल भी बरसेला, तो थाने भी हो सके छे काई को इंतजार। अगर छे थाने इंतजार, तुम भी छा सुनवाने था की बात तैयार, तो बता दियो माने कि वो चीज वो मनक वो काम वो समय जी को थाने रहे छे खास इंतजार, और बतावा के लिए मां की लाइना 2500-800। और अब कौन छे जो जुड़गा मां की साथ? हेलो हेलो हेलो। यहाँ को संपर्क होगो, पर मने लागे छे कि ये शायद ही बात ने भूलगा कि यहाँ को संपर्क रेडियो पिंक सिटी के साथ होगो, लेकिन थे कर सको छो मां के साथ संपर्क और जुड़ सको छो और बता सको छो था को वो इंतजार जो छे कोई खास के लिए हमेशा। और ये देखा कौन छा मां के साथ? हेलो,
2: राम राम जी मैडम।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे हो छे?
2: ये उमा शंकर शर्मा।
0: उमा शंकर जी कोड़े से बोल रहे छो? अच्छा 22 गोदाम
2: जयपुर।
0: तो बताओ जी उमा शंकर जी,
2: इंतजार है शनिवार रविवार को, शनिवार को।
0: अच्छा
2: क्रिकेट को बहुत शौक से। तो जो इंतजार करा था कि भाई गेम हो फटाफट जीत वा रहा और मैं क्रिकेट खेल में जावा।
0: अच्छा कोड़ा जाओ छो
2: ग्राउंड पे?
0: अच्छा ग्राउंड पे खेल वा जाओ छो? तो था कि टीम बनेड़ी छे
2: की क्रिकेट की उम्र तो निकल चुकी, लेकिन गाइस वो एक दोस्त है ना, वो 2 साल से बरकरार
0: है। और भैया भी खयो जा छे ना, दिल तो बच्चा है जी,
2: बस वो
0: तो बिल्कुल बिल्कुल जी। और शौक जो छे वे बड़ी चीज छे, शौक रखना भी चाहिए यदि मनक मन लागे छे सही मायना में अपनो जीवन जीवे छे।
2: 5 दिन पूरी मेहनत करा तो 6-7 दिन को जो सही साथ था वो क्रिकेट को ज्यादा रहे मन इंतजार।
0: बिल्कुल रेणु भी चाहिए, तो बिल्कुल थाने भी हो सके छे कोई अशा खास काम को इंतजार, तो बस थे बता दियो माने कि काई छे वो जी कुछ थाने इंतजार।

0: ई बोली का जो गीत छे मने लागे छे यहाँ में एक खास मिठास हो छे। और मैं अगर मारी बात करूँ तो मैं तो आशा गीता ने सुनबा को भी खास इंतजार करूँ चूंकि हाँ आपनी बोली में कोई गीत काना में सुनाई पड़ियो। और अब देखा छा वे कौन छे जो जुड़गा माँ के साथ। हेलो हेलो तो यहाँ से तो माँ को संपर्क कर को लेकिन थे माँ के साथ संपर्क कर सको छो। और माँ के साथ जो संपर्क करया वे हमारे साथ संपर्क करया किरण शर्मा जी मानसरोवर से। और किरण जी कहे कि भाई प्रीति जी कोई काई भी खे लेकिन मने तो जो इंतजार रहे छे ना सुवारी जय सुबह हो छे चाय वाय पीऊँ आप काम करूँ और दरवाजा ऊपर देखूँ तो बाई को इंतजार रहे छे कि भाई आवेली कि कौन आवेली। जोग माया को कोई भरोसा कौन है बोले अत्ती छुट्टी करे छे पर दूसरी लगाऊं तो वाह भी ऊके जशी छे पर मन तो सुवारी सुवारी बस बाई को इंतजार रहे छे कि हाँ वाह आ जावे तो ताकि मारू काम हो जा न तुम्हार तो बस यहाँ लगे छे राम ने आई तो कहीं करू ली। और किरण शर्मा जी जी तरह से बात बताया मैंने लागे छे कि वे सच में ई बात से बहुत परेशान छे। तो भाई मैं तो यही सलाह देला कि थे एक की जगह दो लगा लो मतलब जो एक से थे चार काम अगर कराओ छो तो दो एक से करा लो दो एक से करा लो तो एक को ना ली तो दूसरी से था को काम चल जा लो। पर किरण जी कहे छे कि भाई कोई ना कहीं लागे मन तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार काम वाली बाई को रह जाए। और माने फ़ोन करया अक्षय अक्षय जो छे वे कहे छे कि कोई ना कहीं को भी लागे लेकिन मने जो इंतज़ार रह जाए वो होवे छे छुट्टी को। बिल्कुल कि कद छुट्टी आ ली कद अक्षय स्कूल में है और स्कूल में है तो कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक छे लेकिन स्कूल तो स्कूल ही छे तो बस स्कूल से यहाँ लागे छे कद छुट्टी होली मैं आराम से उठूला सुअर न तो भाई सुवारी सुवारी उठो फिर तैयार हो और चलो स्कूल के लिए भागो। और बोले क्योंकि मैं तो बस से जाऊँ चू बस फिरती फिरती जा छे तो मैंने अति बेगी साड़ी छे पौनी सात ही ले ले छे मन बेगो उठनो पड़े छे। तो बोले मन तो छुट्टी का दिन को इंतजार रहे छे कि हाँ मने सोबा ने मिले लो। तो वही बिल्कुल सही बात छे। हेलो बिल्कुल बिल्कुल जी पंकज जी धन्यवाद तारे। तो भाई देखो यह जो शिकायत पंकज जी करया या शिकायत बहुत जना करे छे कि भाई थे आओ ट्रैफिक जाम हो जा छे और लाइना बहुत बिजी आ छे तो लेकिन अब इको तो मैं कोई कर कौन सका लेकिन हाँ ये छे कि थे एफबी जो पेज है उनके जरिए भी माँ से जुड़ सको छो। लेकिन यह बात भी ठीक छे कि जब बात करा तो बात ही हो छे एक जो लिखेड़ो पढ़ा और एक जो आपा बात करा तो बात को तो बात सच में मजे अलग ही है। और आप देखा चा कौन छे जो जुड़ गया माँ के साथ। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार
1: नमस्कार जी
0: कौन बोल रहे हैं। राम राम
1: चौमू से बोल रहे हैं मैं दुर्गा लाल दुर्गा प्रसाद जी जी
0: दुर्गा प्रसाद जी
1: हाँ जी
0: अच्छा तो बताओ दुर्गा प्रसाद जी थे काई कोई बात जो हो चो
1: मैं तो देखो मां का गुरु पूर्णिमा आज से जी की बात जो था ना पारा
0: था। अच्छा क्यों
1: भाई गुरु जी के चला चल उनसे वा करा वा जी से पूजा करा जो पूजा जी आओ चला तो जस तो भी चला तो जस में गावा और चला तो जस में जी मान्यता मिले सब जगह सब माने ही।
0: अच्छा तो थे गुरु पूर्णिमा को जो पर्व आ छे उ को इंतजार करो छो क्योंकि गुरु जी के जाबा की तैयारी के लिए।
1: हाँ पहले दिन चला तो जस आवे तब भी मारने गुरु जी का।
0: बिल्कुल जी और मने लागे छे यो भी एक खास तरीका को इंतजार छे है ना क्योंकि मने लागे छे जद तो इंतजार छे तो वंडे जार आदमी आपनी जद पूरी श्रद्धा से जावे तो आपा अपनी सारी परेशानियां सारी जो बात हो छे ना वे सब भूलर और बस आया लागे छे कि एक शायद दूसरी ही दुनिया में मैं आगा। आप देखा छा कौन छे जो जुड़गा माँ की साथ करबा के लिए अपनी बात लेकिन यहाँ से माँ को संपर्क शायद टूट गो तो कोई बात को नहीं लेकिन थे कर सको जो माँ के साथ संपर्क संपर्क करबा के लिए था कने छे माँ की फोन लाइन 2200-800 उनके अलावा माँ को एफपी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM इसे भी जुड़र थे कह सको छो अपना मनरी बात कि वो काई चीज छे जाए कि उतरे छे थाने इंतजार।

0: खैर खबर तो ले वाला, लेकिन खैर खबर अबार में ले रहा छा जाकी जाने छे इंतजार, और इंतजार छे कहीं को। तो भाई देखा छा आप कौन छे जो जुड़गा मा की साथ। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, मैं सुशीला दत्ता बोल रही हूँ नेपाल में।
0: हाँ जी सुशीला जी, बताओ कहीं हालचाल।
1: मैंने तो उड़ीक रहे कवि सम्मेलन और मुशायरा की।
0: ओहो,
1: जयपुर में बढ़िया सा कवि सम्मेलन हुआ है, कोई मुशायरा हुआ है तो मैं जाऊँ भी सुन बने, मैं सारी रात बैठ सकूँ बैठा।
0: अरे कई बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और यो तो
1: मुश्किल से पूरी हो मारो यो इंतजार।
0: हाँ या सच बात है, बिल्कुल यो इंतजार अशो छे जो बहुत मुश्किल से पूरो हो जाए।
1: बहुत मुश्किल से पूरो, और पूरो हो भी जावे तो को ले जा वालो कोनो तो बहुत कुछ तो आवे ते।
0: या बात तो बिल्कुल ठीक छे कि हाँ मौको मिलियो तो आप जा कौन पाया। यह बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो भाई यही दुआ कराला कि जयपुर में अच्छा अच्छा अच्छा आयोजन होता रहे और थे वहां में जा सकूं। तो भाई देखो इंतजार बाट है ना, या बहुत सारा जना ने बहुत अलग अलग चीज की हो चे कि हाँ भाई ई की बाट जो आचा ई को तो घणो इंतजार रहे छे। था के लिए भी छे कोई ऐसी चीज तो ते जुड़ सकू छो माने और बता सकू छो बाकी फोन लाइन आ 2200 800। हेलो
2: हेलो, राम राम मैडम जी।
0: राम राम जी।
2: मन तो एक को इंतजार है माई नो प्रेस वालो
0: काई को
2: ये कपड़ा प्रेस करे जो।
0: अच्छा,
2: और मैं गांधीपत लालू प्रेस बोल रहा हूँ। और मन अतरो मजा हो माउस को।
0: अच्छा,
2: एक महीना की माउस मिला बी के मायने भी कस्टमर बोला कि भैया आप दुकान कब खोलेंगे दुकान कब खोलेंगे। मैं क्यों भैया आज माउस है, माउस की छुट्टी है। अब फिर भी मैडम परेशान कर दिया, ना नींद फाड़वा दे ना क्या करवा दे, बिल्कुल भी यही इंतजार करो मैं माउस खोलो एक महीना की।
0: बिल्कुल। तो भाई एक तरह से छुट्टी जो छे ऊ को इंतजार सबने रहे छे है ना। और बिल्कुल देखो मने लागे छे जद लगातार काम करता रहे छा तो छुट्टी तो वा चीज छे जी को इंतजार तो बने छे है ना। और आप देखा छे कौन छे जो जुड़गा माकी साथ। हेलो, जुड़वा के साथ ही यहाँ से वहाँ को संपर्क टूट गो, लेकिन थे वहाँ से संपर्क कर सको छो वहाँ की लाइना 2200 800 बता सको जो माने कि वो चीज़ वो इंसान वो काम वो समय अशो खास जी को थाने हमेशा रह वैसे इंतजार। हेलो
3: हेलो मैडम नमस्ते। राम राम।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे थे?
3: मैं प्रहलाद दादी का फटक से।
0: हाँ तो प्रहलाद जी बताओ कहीं को इंतजार रह चे थाने।
3: मैडम भैया तो ऑर्डिनरी तो सेल्स जी को रहे थे, लेकिन इस टाइम तो सबसे ज्यादा जरूरत बात लगी जाए बरसात हो जाए।
0: हाँ बारिश को तो रह चे, लेकिन वया आकर बात करना तो थाने का ही को इंतजार रह चे।
3: अबार तो बारिश को के मैडम सेल दे दो, ये भी टाइम तो मिली जाओ जी घर बरसात आ जाओ।
0: बिल्कुल जी, बरसात आ जाओ है। और मने तो लगे छे जयप्रिया ने तो बरसात को इलिए भी इंतजार रहे छे कि जद बारिश आवेली जदी तो गोट होवेली है ना। तो बिल्कुल सावन आलो तो बारिश होली तो गोट होली, और गोट की घूगरी अगर न करा तो फिर जयप्रिया ने तो मतलब मन लागे छे कि यहाँ लागे छे अरे टाइम आई खड़गो, लेकिन आपा तो गोट ही कौन करे। तो बिल्कुल वहाँ भी रह छे, और वहाँ भी देखो बारिश मौसम सुहानो एक अशो मौसम जो शायद माने दिखे जाए है ना। गर्मी ने मैं महसूस करा छा देख कौन सका, सर्दी ने मैं महसूस करा छा देख कौन सका, बारिश ही एक अशो मौसम छे जो माने दिखे छे, जिन्हें मैं महसूस भी करा छा जो दिखे भी छे। और वह माटी की खुशबू जब वह पहली पहली बूंदा पड़े छे धरती पे, आहा आया लागे छे बिल्कुल तन मन में रच बस जा छे है ना। हेलो,
4: हां जी
0: नमस्कार।
4: भगवान चाहे जाएंगे गिरदावरा चढ़ाई।
0: हाँ जी बताओ।
4: अरे क्लाइंट है जिस दिन छुट्टी हो जी ना, तो मैं कहें थे त्रिवेणी महाराज के सत्संग में जाओ जा। तो कहें थे जिस दिन सत्संग में हो जाए ना तो दिमाग खराब हो जाओ तो साहब बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, तो थाने सत्संग को इंतजार रहे थे।
4: सत्संग इंतजार रहे थे
0: बिल्कुल, और यह तो बहुत ही अच्छी बात है।
4: राम ने
0: तो बिल्कुल यो एक अलग जी को राम में मन रमगो उन्हें उनको इंतजार रह लो, और यो भी एक अलग ही इंतजार छे। थाने भी छे अगर कोई चीज को इंतजार तो ते बता सको छो माने, हो जाओ तैयार बताबा के लिए माँ की लाइना 2200 800। हेलो
5: हेलो
0: हेलो
5: हेलो, मैं राधे राधे।
0: राधे राधे जी।
1: हाँ जी, और कहीं हाल चाल का?
0: बस जी, चोखा छे थे बताओ।
1: हमारा भी हाल चाल चोखा, गर्मी पड़ रही छे जोरा की।
0: गर्मी पड़ रही छे जी जोरा की।
1: अब तो बस इंतजार बरसात को छे, और बरसात में रेडिया से गीत सुनवा को इंतजार जो बरसात आला।
0: ओहो बिल्कुल। और वहाँ भी अपनी बोली का जो गीत छे वहाँ को तो अलग ही मजो छे, है ना। आप थे भी जुड़ सको छो वहाँ की साथ, अगर थे थाने इंतजार की, थे कह सको था की बात, तो वो इंतजार करवा के लिए खत्म। थे जुड़ सको छो वहाँ की लाइना 2200-800 के जरिए। और आप देखा छा कौन छे वहाँ की साथ? हेलो,
5: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
5: कैसे हो?
0: बस जी चोखा थे, कौन बोल रहे छो?
5: मैं जयपुर से बोल रही हूँ, नसीर मोहम्मद शाह केरल मा।
0: हाँ तो तो बताओ जी, कहीं को इंतजार रहे छे थाने?
5: जी माने तो सीजन को इंतजार रहे छे के सीजन कब चाले लो, त्योहार कब आए लो बड़ो, जो माँ को काम चाले लो। देखो जी काम की इज्जत छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखो रोजी कोई भी आदमी के लिए उनकी रोजी रोटी ही सबसे खास हो छे, है ना। तो बिल्कुल काम, और वया भी यहाँ कह छे की काम जो छे वह भगवान की मेहरबानी से मिले छे। तो इलिए काम अगर थाकन है कोई काम छे करबा के लिए, तो हमेशा खुश हो काम करनो चाहिए, क्योंकि किस्मत वाला ने काम करवाने मिले छे। और यह सच में बहुत बड़ी बात है कि काम जो छे उनकी ही पूछ भी हो छे, और काम की वजह से ही आदमी की पहचान भी हो छे। हेलो,
6: हेलो,
0: नमस्कार।
6: राम राम मैडम।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे थे?
6: गणेश बोल रही हूँ मैडम।
0: कोड़े से?
6: कालवाड़ रोड से मैडम, चंपापुरा से।
0: अच्छा, चंपापुरा कालवाड़ रोड से दिनेश जी बात कर रहे हैं। तो दिनेश जी ने काई को इंतजार रह वे छे?
6: मन तो मैडम सावण की डोकरी को इंतजार जे।
0: 12 महीना उनको इंतजार करो छो?
6: ना ना ना ना, बरसात के टाइम
0: नहीं। तो अब मैं तो बात कर रहे हैं, अच्छा कि कोई अशो काम, कोई अशो इंसान, कोई अशी चीज जी को 12 महीना था ना इंतजार रहे छे कि हाँ यार देखा कत कराला। जहाँ कोई कह रहे छे कि वाने छुट्टी को रहे छे, कोई ने आपकी तनख्वाह को रहे छे, कोई ने काम चोखो चाले उनको रहे छे, कोई ने कोई बाइला से मिलबा की रहे छे, थाने काई को इंतजार रहे छे?
6: 12 महीना तो मैडम काई को इंतजार को रही है अनको, तो
0: काई को इंतजार कौन रहे भाई, थे घना सबर वाला आदमी जो। तो थाने भी रह वे छे कोई चीज को इंतजार। तो बस ते बता दियो माने जुड़ सको छु वहां से, वहां की फोन लाइना 2200-800, और ई के जरिए थे पहुंचा चको छो अपनी बात। हेलो,
7: हेलो,
0: नमस्कार,
7: कौन बोल रहा छो?
0: रेडियो पिंक सिटी से बोल रहा छा, थे कौन बोल रहा छो? हेलो,
7: हां जी,
0: हाँ जी, था को नाम बताओ।
7: मारो नाम जानवी छे।
0: आपको नाम जानवी छे? अच्छा जानवी, हाँ। स्कूल में पढ़ाई करो छो?
7: हाँ।
0: कशी क्लास में?
7: पांचवी
0: में पढ़ो छो। अच्छा तो जानवी ने काई चोखो लागे छे, काई को इंतजार रहे छे?
7: बारिश है।
0: बारिश को? अच्छा तो बारिश क्यों चोखी लागे छे?
7: अच्छी गर्मी तो
0: अतरी गर्मी पड़ रही है जिसे बारिश चौकी लागे छे। अच्छा बारिश में एक बात बताओ, कागज की नाव कदे बनाया छो?
7: हाँ।
0: नाव चलाओ छो पानी में?
7: हाँ।
0: अच्छा बारिश में नहाबा देवे छे कि कौन देवे छे? मम्मी
7: देवे छे।
0: देवे छे तो हाँ। जब भी बारिश हो छे हमेशा नहाओ छो कि कदे कदे नहाओ छो?
7: कदे कदे।
0: कदे कदे तो थाको मन हमेशा करे छे कि कदे कदे करे छे?
7: हमेशा ही करे छे।
0: अच्छा फिर मम्मी जावा कौन दे?
7: काई?
0: नहीं तो फिर दे हमेशा मन करे छे तो हमेशा क्यों ने नहाओ, कदे कदे क्यों नहाओ छो बारिश में?
7: मम्मी डांटे छे।
0: मम्मी डांटे छे? अच्छा हाँ। एक बात बताओ, मम्मी ज्यादा डांटे छे कि पापा ज्यादा डांटे छे?
7: मम्मी।
0: तो भाई याद थी छोटी सी बच्ची जानवी जो कह छे कि वाने बारिश को इंतजार छे क्योंकि अति गर्मी पड़ रही छे। बारिश को तो अबार इंतजार छे, लेकिन पूरा साल अगर कोई चीज छे जी को थाने रह छे इंतजार, कोई काम कोई इंसान, तो ते बचा सको जो माने बतावा के लिए वहां की फोन लाइना 2200-800।

0: की धरती है ये चांदी का आसमान, अरावली की उम्र हिमालय से ज्यादा, टंगस्टन की देश में इकलौती खान, धौलपुर जोधपुर के नायाब पत्थर, संगमरमर ने बनाई अलग पहचान। रंग रंगीला छह छबीला प्यारा राजस्थान, तो क्यों ना करें गुमान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।
1: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।